0: क्या कहा ते कोरे रो
1: टोटो को एफएम
2: ना फकटाउ की
3: काका तिनोता मता
4: हे ओरी ते तेने फकटाउ की किते कोरे रो ओतावीवी कावे ए त्याती इते पुका पुका मातोना कानो ही
3: के काका तिनोता मता
0: क्या कहा ते कोरे रो
1: टोटो को एफएम
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.